0: across to the coast, to the island of Jew. I've got a friend, a colleague in Ahmedabad as well. Yeah, so it's a very big city. The Gujarat's an amazing state. And if you are in the Gujarat, get yourself to the island of Jew, which is spelled D-I-U.
1: Oh.
0: Meaning God.
1: Well, all respect due. Here's Nuclear.
2: इस डीजे की कहानी एक कल्पना नहीं है, ये मनगढ़ंत संगीत जरूर बनाता है लेकिन दिलों को छूता है। इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में भी उल्लेख है। इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियां थर थर कांपने लगती है। सुनने वाले अभी फिलहाल सिर्फ मनोरंजन पर ध्यान दें, हकीकत में ऐसा कम ही होता है।